हम सब तो मुसाफिर हैं, हमें करियर चाहिए, प्यार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पैशन चाहिए, सक्सेस चाहिए और हाँ शांति भी चाहिए। आजकल आपको बहुत सारी चीजें दिखती होंगी कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसी में एक नाम है आषाढ़ का एक दिन। आपने पढ़ी है? ये सिर्फ कालिदास और मल्लिका की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सब की कहानी है। ये किताब बताती है कि हर सफलता कुछ मांगती है और कई बार उसकी सबसे बड़ी कीमत वो लोग होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। करियर एंड लव के बीच में किसको सिलेक्ट किया जाए, किसी अपने को खोया जाए या सोचा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक हमारी क्या स्थिति होगी, पढ़ के देखिएगा। मैं काफी इंस्पायर करती हूँ वैसे आपको किताबें पढ़ने के लिए। पढ़िएगा और फिर बताइएगा म्यूजिकल दिल्ली में।

0: क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में? भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग, प्रासंगिक और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास ट्रेनिंग देना, ताकि वो आसानी से आजीविका पा सकें। ये निशुल्क होता है। युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार मुफ्त उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। आधुनिक टेक्निक, जिसमें कि AI, ड्रोन टेक्निक, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे नए लेसन्स भी हैं इसमें। और इसके अलावा ये जब पूरी ट्रेनिंग हो जाती है तो सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। तो इसके बारे में और जानिए, देखिए, आवेदन कीजिए। कैसे करना है? स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर जाइए और अच्छी तरह से रजिस्ट्री करके उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो उसको पढ़िए और क्या क्या चीजें हम सब के काम की हैं ये जानना जरूरी है।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

और आप भी खफा मत होइएगा अगर हम हर एहसास को दबाते रहे मगर हमारे गट चुप नहीं रहे। जो आंसू आंखों से नहीं निकले वो हमारी बॉडी में कुछ न कुछ बन के दिखाई दिए, हम सबको खुश करते रहे पर उसकी कीमत हमारे हॉर्मोन्स ने चुकाई। अरे जनाब, ये म्यूजिकल दिल्ली है, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, आपकी बातें हैं FM Gold AIR Delhi @gmail.com पे, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है।

दिल में हलचल हो इसके लिए कई सारे इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं। आप जाइए, मॉनसून मेला 6 से 17 अगस्त तक चल रहा है और इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहां पे आप जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा कि आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो हम सब के लिए ना मौसम ही बहुत है, बस बादल

जाए, हलचल अपने आप शुरू हो जाती है। तो म्यूजिकल दिल्ली आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। आप हमें मेल कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी बात है जो आप सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और मैं जैसे कि मैंने शुरू कहा था शुरू में कि थैंक यू एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, तो धन्यवाद कहते हुए 9:57 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, आपको कहती हूँ कि म्यूजिकल दिल्ली यहीं तक, लेकिन मैं हूँ आपके साथ बहुत देर तक।

0: ma, one, two, three, four.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया। श्री मोदी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी कब लोगों ने नहीं की होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा

रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भी आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले में कल रात आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार विले पार्ले पश्चिम में एक भूतल और 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस पद के लिए 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अंतिम चरण की जांच के बाद 18 उम्मीदवारों को चुना गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रांची में जिला प्रशासन के देर रात विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानिंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानिंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests and alleged anomalies in Ayodhya Ram Mandir donations. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day, and the youth of the country also want discussions on issues concerning them." The Speaker

당근. स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। आज का दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हमारे युवा सपनों को ज्ञान विज्ञान और प्रकृति को सलाम करने की बात बताता है। तो आप सभी प्यारे श्रोता साथियों को मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी सुन रहे हैं। तो अब वक्त है कि हम पूछ लें आपसे वो सवाल जो होता है हमारे आज के प्रश्न का। तो साथियों आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस का माहौल बना हुआ है हमारे देश में, तो स्वतंत्रता दिवस की ऐसी कौन सी यादें हैं आपकी बचपन से जुड़ी हुई, जब आप झंडे फहराने या पूरे यूनिफॉर्म को मुश्तैदी से पहनने के साथ वहां पर जाकर बूंदी खाने जैसी यादों से जुड़े हुए हैं। इन यादों को हमारे साथ बांटिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और इनका उत्तर आपको देना है fmgoldga@gmail.com पे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भेजिए फटाफट अपने उत्तर हमारे साथ। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, वे युवा जो हमारे विचार और अपने हौसलों से हवा का रुख बदल सकने की ताकत रखते हैं, जिनके प्रयास से देश और दुनिया की दिशा बदल रही है और हम इसे देख रहे हैं। और हमारे देश में तो जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो हमारे युवाओं का है, जो राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं, क्योंकि ये युवा ही नई कंपनी और स्टार्टअप शुरू कर रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं और ऐसे ही वो हमारे देश के नाम को रोशन करते जा रहे हैं। एक नहीं ऐसे अनेक नाम हैं जो युवा शक्ति का सफल हस्ताक्षर बन चुके हैं। तो आज का दिन हमारे युवाओं को समर्पित है, हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आज के इसी दिन में हम याद करते हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी आज जयंती है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सफर की नींव मजबूत की। उसी तरह आज एक और विशेष दिन है जो हमें ज्ञान की दुनिया से जोड़ता है, राष्ट्रीय पुस्तकालाध्यक्ष दिवस। पुस्तकालय विज्ञान के पितामह डॉक्टर S.R. रंगनाथन की जयंती पर हम इस दिन को मना रहे हैं। उन्होंने कहा था किताबें सिर्फ अलमारियों में रखने की चीज नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति है। और सच में दोस्तों किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कौन हो सकता है ना। और इसी के साथ सावन मास की अमावस भी है आज, जिसे हरियाली अमावस कहते हैं। ओडिशा राज्य में चितलागी या चितौ अमावस्या के नाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस दिन भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार और पारंपरिक पकवान चितौ पीठा का भोग भी लगा या जा रहा है। और उसी तरह आदि अमावस्या के नाम से दक्षिण भारत में भी आज के दिन को मनाते हैं। तो धरती की हरियाली का जश्न मनाते हैं आज मिलकर हम सभी, हरा भरा हो जीवन हमारे त्योहारों के संग। इसी संदेश के साथ सुनते हैं हम ये गीत।

आशाओं के सावन में, यानी आशाओं के दीप जलाने वाले इस गीत को आप सुन रहे थे आशा फिल्म से, और आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। और दोस्तों, आपको याद दिलाती हूँ आज की प्रश्नावली, चूंकि वो भी आशाओं से भरी हुई है, और वो है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है आपकी जो आपको आज भी गुदगुदाती है। हमारे साथ साझा कीजिए, और fmgoldga@gmail.com पर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी उन्हीं बातों के लिए। लेकिन फिलहाल साथियों, आज चूंकि बहुत खास दिन है, आज है नेशनल लाइब्रेरियन डे।

0: तो आधुनिक दौर में पुस्तकों की भूमिका, डिजिटल युग में पुस्तकालय से जुड़ी जानकारी और बदलाव की दिशा में प्रकाश डालने के लिए नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला जी से रश्मि कुकरेती जी की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। दोस्तों, जो पुस्तकालय है वो केवल किताबों का संग्रह नहीं है बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों का ऐसा खजाना है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। एक अच्छी पुस्तक हमें नए विचार देती है, नई दिशा देती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो आज हम जानेंगे कि आधुनिक दौर में जो पुस्तकालय है उनकी क्या भूमिका है और अगर हम डिजिटल युग में पुस्तकालय की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं और अगर आप किसी डिजिटल पुस्तकालय को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बदलाव आते हैं, तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धन सिंह बैसला जी, जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के बड़ौली गांव से आए हैं FM गोल्ड के स्टूडियो में। आप ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े हुए हैं और धन सिंह बैसला जी ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से लाइब्रेरी का निर्माण करने का काम करते हैं और बहुत सारे अन्य जो सामाजिक सेवाएं भी अपने गांव में और आसपास के जो पलवल जिले हैं उसके क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत धन सिंह जी आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में।
2: हार्दिक आभार
1: जी। तो धन सिंह जी, बताइए, आप जो अपने गांव में जन सहयोग से एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करवाया है, आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार से उसने मूर्त रूप लिया?
2: हमारे गांव में, वैसे ये हमारा संगठन जो है वो सारे देश में काम कर रहा है, 10-12 स्टेट्स में काम कर रहा है। उत्तर की तरफ का सारा जो क्षेत्र है वहाँ अभी तक हम पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, प्रांचल तो है ही है, इस सारे क्षेत्र में, राजस्थान में बर्ड व्यापक क्षेत्र में हमारा फैलाव है, मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में, संभल संभाग में, तो एक साथ 50 गांवों में, मतलब इस तरह से लाइब्रेरियों के निर्माण की मुहिम चलाई। तो हमारे गांव में अगर मैं बात करूं तो आरंभ में हम सारे लोग ऐसा महसूस करते थे कि बच्चों के लिए कैसी लाइब्रेरी की आवश्यकता है जहां वो सारे बैठ के पढ़ सकें। शहरी क्षेत्रों लाइब्रेरियां हैं, पेड लाइब्रेरियां हैं, ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं होती, तो 1500 रुपए, 2000 रुपए अगर उन्हें पे करना होता है, फिर साथ में 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है, तो उनका समय भी बच जाए और उसका आर्थिक संसाधनों की भी बचत हो सके, ऐसा सोचकर हमारे दिल में ये ख्याल आया कि एक लाइब्रेरी का निर्माण हो गांव में। तभी उसी संदर्भ में हमें पता चला कि ग्राम पाठशाला नाम का संगठन वो काम कर रहा है और जिसमें लाल बहार जी के नेतृत्व में साथी काम कर रहे हैं, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ तो हमें एक दिशा निर्देश प्राप्त हुए कैसे हम आसानी से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। हमें बड़ा मुश्किल सा कार्य लगता था, पर जैसे ही उस क्षेत्र में हम आगे गए तो पता चला बड़ा सरल सा काम है और बहुत सारे लोग कर सकते हैं।
1: तो ये जो लाइब्रेरी आपने डिजिटल पुस्तकालय बनवाया, वो जो जगह थी और उसका निर्माण था, वो जगह कौन सी जगह आप लोगों ने चुनी?
2: हमारे गांव में चौपाल है, बड़ा गांव है तो कई सारी चौपाल है, तो एक चौपाल है बड़ी अच्छी सी, उसे बैरम मोहल्ला की चौपाल कहते हैं
1: जी।
2: तो उस चौपाल को हमने मोहल्ले के लोगों से मांगा, बड़ा अच्छा सा स्थान था वो। जब हमने बताया किस तरह की हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं तो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम न केवल चौपाल देंगे बल्कि अगर जो आपको और कोई आवश्यकता हो आर्थिक संसाधनों की, वो भी हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए, हम आगे बढ़ेंगे, और वो जगह हमें मिल गई।
1: तो जो आर्थिक संसाधन थे वो गांव के लोगों ने ही
2: आपस में
1: हाँ। दिए और आप लोगों ने वो जो बिल्डिंग थी एक खड़ी कर दी। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये लाइब्रेरी बनवा दी तो जो विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे या जो भी पढ़ने के रसिक थे बच्चे, वो कैसे जुड़े और इस लाइब्रेरी का स्वरूप आपने किस प्रकार से विकसित किया?
2: इसके लिए लोग इकट्ठे हुए। गांव में एक परंपरा आज भी है जिसको हम पंचायत कहते हैं, जिसे हम जनरली मीटिंग कह देते हैं आजकल, तो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए, तो वो विभिन्न गलियों से, विभिन्न मोहल्लों से वो सब लोग आए
1: जी।
2: और जैसे ही वो आए तो वो सूचना उन्हीं के जरिए सबके पास तक पहुंच गई, सबके घरों में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो पहले ही गांवों से शहर की तरफ जा रहे थे, वो पेड लाइब्रेरीज में जा रहे थे, फिर उन्हें
1: जहाँ इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी, बैठने के लिए एक आसान जगह थी, जहाँ कुर्सी था, टेबल था और उनके पास वाईफाई था जी,
2: हमने एसी भी लगवाया उसका,
1: अच्छा वातानुकूलित बनवा दिया जी। करीब कितने बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग जो वहाँ पर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं?
2: लगभग 50 बच्चे हैं।
1: अच्छा जी, तो ये क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या किसी प्रकार

0: की तैयारियां कर रहे हैं आगे जीवन सुधारने के लिए,
1: उसमें जो स्टूडेंट हैं या जो करियर के लिए काम कर रहे हैं वो वाईफाई से भी वो ले रहे हैं, हर तरह की पुस्तकें अवेलेबल करा रखी है वहाँ
0: जी।
1: और कुछ प्रौढ़ लोग भी आते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो जो अपने प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं और मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने वाली जो अच्छी चीजें हैं वो सब चीज वहाँ मौजूद है। अगर किसी को कोई और अच्छी चीज, जैसे किसी के दिमाग में कोई आती है, वो अगर उस तरह की किताब की मांग करता है तो हम वहाँ लाकर रखते हैं।
0: तो आपने किताबें भी रखी हुई हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी या वाईफाई जो है उनको दे रखा है।
1: दोनों चीज हैं,
0: दोनों चीजें मौजूद हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने देखा कि पढ़ने वाले बच्चे वाईफाई से जो है बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और पढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ पढ़ना ही शुरू किया या उनके अंदर और भी कुछ बदलाव आपने देखे?
1: हमारे दिमाग में पहले ऐसा था कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा, लेकिन जब लाइब्रेरी खुल गई, जो उसके इतर परिणाम आए
0: जी
1: वो बिल्कुल अलग थे। पहले जो गांव के नुक्कड़ पे जो बच्चे इधर उधर खड़े होते थे, एक दूसरे से कुछ कहते थे, कहीं कभी झगड़े भी हो जाते थे, आपस में टसन होता था, अहंकार का भाव होता था, अब उनमें सौहार्द का, प्रेम का भाव है, वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो कभी कोई मजाक भी करते तो उनमें बड़ा आनंद पूर्वक होता है, सौहार्द बढ़ा है।
0: जब किताबें हैं तो जो ज्ञान का प्रकाश जब पहुंचता है तो अच्छे विचार बनते हैं, और जब अच्छे विचार बनते हैं तो जो आपने बताया कि सौहार्द भी आपस में बढ़ा, और मुझे लगता है कि समय का उपयोग विद्यार्थियों ने किया। अच्छा, ये निशुल्क है बिल्कुल लाइब्रेरी?
1: बिल्कुल निशुल्क है
0: जी।
1: पहले गांव के बच्चे शहर में जाते थे तो उनका 1.5-2 घंटा खर्च होता था
0: आने जाने
1: का, और उन्हें उसके लिए पैसा देना पड़ता था
0: जी।
1: अब उन्हें वो मुफ्त में उपलब्ध है और उनका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होता। एक बहुत कमाल की बात बताऊं, एक दिन मुझे बुखार हो रहा था, रात्रि में नींद नहीं आ रही थी और रात को 1:45 बजे का समय था
0: जी।
1: तो हमारे सीसीटीवी कैमरा से जोड़ी हुई है लाइब्रेरी, अपने फोन में हम देख लेते हैं, तो मैंने उसको देखा तो उस समय रात के 1:45 बजे 17 बच्चे वहां पढ़ रहे थे।
0: अच्छा,
1: बड़ा अच्छा लगा कि गांव के बच्चे जो पहले थोड़ा समय देते थे पढ़ने पर, अब वो लगातार बहुत लंबा समय दे रहे हैं
0: जी।
1: और उसके परिणाम बेहतर आ रहे हैं।
0: तो ये तो सारी बातें जो अच्छे जो परिणाम आपको मिले, लेकिन जब आप बनवा रहे थे, सोच रहे थे, तो क्या बिल्कुल सहयोग एकदम मिल गया, क्या कुछ दिक्कतें भी आई बनवाने में?
1: हमें दिक्कतें कम आई, वैसे कुछ जगह दिक्कत होती, किसी गाँव में मान लीजिए चौपाल नहीं है
0: जी,
1: तो वहाँ कुछ लोगों के मकान है वो खाली पड़े हैं
0: जी,
1: वो लोग शहर में चले गए, क्योंकि अच्छे काम के लिए आदमी सदैव तैयार रहता है, उस घर का रखरखाव हो जाता है। और ऐसे लोगों से जब बात करते हैं, और बहुत सारे गांवों में लाइब्रेरी, लगभग 3-4 हजार गांवों में ग्राम पाठशाला के मिशन से लाइब्रेरी बन चुकी हैं अभी तक, और ये कार्य आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है
0: जी।
1: तो वहाँ ये दिक्कत आती है कि अब जगह की क्या ऐसे व्यवस्था हो, दिक्कतें तो हैं
0: हाँ।
1: और कोई आदमी आगे बढ़ता है तो कदम चूम लेती है आकर के, खुद मंजिल है मुसाफिर तू हिम्मत न हार। बस एकदम जैसे ही आगे बढ़े, तो हमारा तो अनुभव ये था, और जो हमें औरों का जो अनुभव हमने देखा शुरुआत में जैसे आरंभ हुई, तो मैं उस प्रसंग को बताना चाहूंगा। गनौली गाँव में वो कोरोना काल था, गांव के बच्चे जो शहर जाते थे उनका वहां जाना, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, कोई नहीं आ जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो गांव के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि उन क्यों नहीं ये जो चौपाल पड़ी है उसके मरम्मत करा के इसको लाइब्रेरी बना दें, गांव के बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। तो उन्होंने जितने बच्चों के लिए पढ़ाई, थोड़े ही दिन में वो बहुत कम पड़ गई। उन्होंने कहा कम पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता था, जितने गांव के बच्चे हैं उससे भी ज्यादा बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। पता चला कि आसपास के गांवों के बच्चे वहां आने लगे
0: जी।
1: तो फिर गांव के लोग बड़े सौहार्दपूर्ण भाव के होते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उन गांवों में भी लाइब्रेरी हो, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं
0: जी।
1: तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के दूसरे गांवों में गए और गांव में जाकर उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल हाथों हाथ लिया उस विचार को, और इस तरह से लाइब्रेरियां बनती चली गई
0: जी। ये तो बहुत अच्छी आपने बताई बात कि बहुत सारे बच्चे और जुड़ गए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पर और लैपटॉप पर और वाईफाई कनेक्शन के लिए उनके मन में एक बड़ा आकर्षण है कि हमें डेटा मिल रहा है, तो ये जो फ्री का डेटा मिल रहा है बच्चों को, इसमें एक सदुपयोग तो है ही कि आप अच्छी अच्छी साइट से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग होने के भी बहुत साधन मतलब रास्ते खुल जाते हैं। तो आप लोगों ने जब देखा इतने सारे बच्चे जुड़ गए और इतने सारे बच्चे पढ़ने लग गए यहाँ पे, कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि उसका सुरक्षित इस्तेमाल हो और जिस कार्य के लिए ये वाईफाई वहाँ लगाया गया है वही कार्य वहाँ हो रहा हो?
1: हमने हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और 15 हमारे साथी ऐसे हैं जो सीसीटीवी कैमरा से जुड़े हुए हैं और वो उस पर नजर रखते हैं।

0: फिर जो गांव के जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो उधर से निकल रहे हैं तो वो एक बार झांक जाते हैं उधर।
1: अच्छा।
0: तो गांवों में ये बात अभी भी है कि कोई बुजुर्ग है और वो उन्हें एक बार शाबाशी देके जाता है, उनका उत्साहवर्धन होता है, साथ में अनुशासन भी बढ़ता है, उन्हें लगता है कि कोई जिम्मेदार आदमी हमें देख रहा है। फिर बीच में कई बार अड़ोसी पड़ोसी या और भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाते हैं, देख के आते हैं उन्हें वो क्या कर रहे हैं बच्चे,
1: यानी चौकसी भी है, निगरानी भी है, बच्चों की देखभाल भी है और सुरक्षा भी है।
0: जो जिम्मेदार बच्चे हैं, जो थोड़े से मतलब बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा नजर रखने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और थोड़ा सा निखरा हुआ है, थोड़ा सा विकसित विचार के जो लोग हैं वो उन्हें अपने आप भी चेक करते हैं, कई बार उनसे कुछ नहीं कहते वो सूचना हम तक प्रेषित कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से भागीदारी से जो पूरा गांव है वो कोशिश कर रहा है। अब एक बात और दिमाग में आती है धन सिंह जी कि ये बन जाने के बाद हर व्यक्ति के मन में होता है कि अब कुछ आगे बढ़े, तो आगे की योजनाएं भविष्य की क्या क्या है आप लोगों के दिमाग में, क्या और भी पुस्तकालय खोलने का विचार है या इससे जुड़ी कुछ और योजनाएं जो युवाओं का भविष्य बेहतर कर पाएंगी?
0: हमारी योजना है 6,64,369 लाइब्रेरी हमारा टारगेट है।
1: अच्छा।
0: भारत के हर गांव में एक निशुल्क लाइब्रेरी हो, वो बालक जो कहीं भी अभावों में है, अभावों के कारण से उनकी शिक्षा कमजोर ना हो, उनका मानसिक विकास कमजोर ना हो, क्योंकि ज्ञान वैभव ही परम वैभव पर देश को ले जाएगा, ऐसी हमारी धारणा है। हम जल्दी ही आगे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था भी वहां हो जाए, हालांकि वो एक ही जगह है और वहां कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी गांवों में कुछ लोग हैं जो बिना किसी देखरेख के नहीं छोड़ना चाहते, हाँ, तो वो हिचकिचाहट उनके दिमाग में ना हो, इसलिए लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी बन सके।
1: और हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं इस काम के लिए कि इसी प्रकार से आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलते चलते अगर हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे धन सिंह जी?
0: मेरा संदेश भी है, प्रार्थना भी है और अपने छोटों को सलाह भी है कि बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके संस्कार अच्छे हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, शांति हो, सब एक दूसरे को प्रेम करें, तो उसके लिए लाइब्रेरी बनवाएं अपने अपने गांव में। हर गांव की सज्जन शक्ति हर श्रेष्ठ काम के लिए आने के लिए तैयार रहती है, पर उस पर यही है बस कोई पहल करे। तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव में पहल करिए। आपके श्रोताओं से मेरा ये अनुरोध है कि वो अपने अपने गांवों में सज्जन शक्ति को इकट्ठा करें, उनसे बात करें और इस कार्य में सहयोग करें हमारा और आगे बढ़ें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जहाँ पुस्तकें होंगी वहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं होता बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और आजीवन सीखने का तो ये केंद्र है। और पुस्तकालय में पढ़ने की जो आदत है ना, वो तो शोध को बढ़ावा देता है, व्यक्तित्व का विकास उसमें होता है और एक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डिजिटल युग में तो जो पुस्तकालय है और भी विश्वसनीय है और प्रामाणिक जानकारी के एक सशक्त स्रोत के रूप में उभरा है। इसमें धन सिंह बैसला जी हमारे साथ जुड़े, एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आए और धन सिंह जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: मैं आपका और एफएम गोल्ड का, ऑल इंडिया रेडियो का, सभी का हार्दिक आभारी हैं हम सभी आपके श्रोताओं को। पुनः पुनः नमस्ते।
1: और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।

साथियों, नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आपने अभी बातचीत सुनी ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला की रश्मि कुकरेती से। और दोस्तों, चूंकि हमारी हर दिन की कोई ना कोई प्रश्नोत्तरी है और इस प्रश्नोत्तरी को हम आपसे फिर दोहराते हैं, और वो प्रश्नोत्तरी है, आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है, और शेयर करना है fmgoldga@gmail.com पर। और ये बात मैं आपको दोहरा रही हूं कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं इन प्रश्नों के उत्तर लेकर, जिसमें हमारे नियमित श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और इन्होंने अपनी याद बताते हुए कहा है कि प्राइमरी स्कूल में जब वो थे तो वो एक फ्लैग लेकर पूरे मोहल्ले में घूमा करते थे। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि देशभक्ति का भाव बचपन में हमारे दिल में जिस तरीके से चस्पा होता है वो पूरी उम्र हमारे साथ चलता है। तो बहुत शुक्रिया अपनी इस भावना को हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन जी। हमारे अगले जो साथी हैं, श्रोता साथी, उनका संदेश है, वो है अफरोज शेख, और ये नेमुआ सुपौल बिहार से भेज रहे हैं अपना संदेश, और कहते हैं कि इनका संदेश थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैनेजर का एक लकड़ी हुआ करता था, मतलब एक लकड़ी कोई होती थी और वो अपने गांव में उसे उसका छिलका उतारकर उससे रंग निकालते थे, और रंग निकालकर डिजाइन बनाते थे, और उस डिजाइन से उसे झंडे में लगाकर गांव गांव गली गली घूमते थे और उन्हें बहुत आनंद आता था। वही क्या बात कही आपने, सचमुच में बचपन जो है वो मौलिकता से भरा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस हम अपने देश को सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे कागज में ही सही पर उस समय अपनी कल्पनाओं को बिखेरते थे। बहुत ही खूबसूरत सा आपका संदेश है। और गौरी शंकर जी का हमारा संदेश आया हुआ है, और उन्होंने कहा है राम राम जी, बहुत बहुत आपको भी राम राम। और उन्होंने कहा है 60 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्वतंत्रता दिवस का इंतजार बहुत रहता था, और उस दौरान टीवी भी नहीं होता था, और हम स्कूल में इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बहुत बेचैन रहते थे, और रेडियो पर भी हम सुनते थे तो मन में बहुत खुशी होती थी इस दौरान जो कार्यक्रम आते थे उन्हें सुनकर। लेकिन आजकल वो सुविधा नहीं दिखती है उन्हें, फिर भी पहले जैसी बात को वो मिस करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपनी इन भावनाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक और श्रोता साथी हैं जिन्होंने कहा है रेडियो और टीवी जो है 26 जनवरी की सुबह जो होती थी उससे हमारी शुरुआत होती थी, और उसमें देशभक्ति गीत बजते रहते थे, दूरदर्शन पर सुबह सुबह परेड देखने को मिल जाया करता था, और पूरे परिवार के साथ हम एक साथ बैठकर इस वातावरण का आनंद लिया करते थे। जी, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत यादें हैं आपकी, ऐसी ही यादें हम सभी की बचपन में जुड़ी होती हैं। तो आपको भी बताना है साथियों, जिन्होंने अभी तक संदेश नहीं भेजा है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी मीठी मीठी याद है जो उन्हें गुदगुदाती है आज भी, और बताना है fmgoldga@gmail.com पर। हम बातें करेंगे और भी, फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

यशोदास और हेमलता की इस खूबसूरत सी आवाज में आपने सुना थे चोर फिल्म से ये गीत, और सुर में सुर मिलाने का ही तो मौसम है दोस्तों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है ना, और ऐसे में इस बार हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आजादी के 100 साल पूरे होने तक यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प अब दूर नहीं है, है ना, और इस संकल्प को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी भी है दोस्तों, जिसके लिए हमें नवाचार और कौशल विकास को पूरी तरह से अपनाना होगा, अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए देश हित में एक साथ चलना होगा, और नई चीजें सीखते हुए अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ाना है, नवाचार करना है, ताकि देश के विकास के

ये नए आइडिया और स्टार्टअप्स हमारे देश में खुलें और हमें नया अवसर मिले, इससे ही तो हमारा आने वाला कल बनेगा वही जो हम आज से बनाना चाहते हैं, है ना दोस्तों। जाहिर है हर भारतवासी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और दूसरे सामाजिक जो बुराइयों के मुद्दे हैं उनसे अपने देश को मुक्त देखना चाहता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और उच्च जीवन स्तर हासिल करने के लिए हम सब एक साथ प्रयासरत हैं और हम स्वयं साक्षी हैं कि सपनों का भारत पूर्ण विकसित होने के लिए कदम बढ़ा रहा है अपने आगे। और इसलिए हमारी जो देश की अलग अलग पीढ़ी है जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अमृत पीढ़ी के हमारे जो नौनिहाल हैं वो नवाचार को तेजी से अपना रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। और जानते हैं इनके आइडिया, इनके हुनर और संकल्प में निहित है विकसित भारत का स्वप्न, जो विकास, लिंग समानता, रोजगार के क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। समावेशी विकास में महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना हमारे देश की नीतियों का मुख्य हिस्सा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना, डिजिटल इंडिया के जरिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलना, ये सभी विकसित भारत की पदचाप हैं जिसे हम सुन रहे हैं, है ना। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि असंख्य बलिदान, त्याग, संघर्ष और समर्पण से हासिल आजादी का जो युवा पंछी है वो अपनी आंखों में 2047 के विकसित भारत का स्वप्न लिए उन्मुक्त उड़ान भर रहा है, जो जल्द ही अपनी मंजिल को पाने वाला है।

दोस्तों, लक्ष्य फिल्म से आप शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल गांजेवाला और विजय प्रकाश की आवाज में सुन रहे थे इस वीरता और शौर्य से भरे गीत को। और हमारा जो प्रश्न आज का है वो भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है जो बचपन की यादों को लिए हुए है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है। आपको बताना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। हमारे पास संदेश है हमारे साथियों का, जिसमें डी राजेश्वर राव ने लिख के भेजा है कि जब वो इंडिपेंडेंस का समय होता था बचपन के समय में, तो वो ड्रेसअप होते थे और बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर प्रभात फेरी के लिए जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे अपने झंडे के साथ इसे फहराते हुए आगे बढ़ते हुए। जी, बहुत सुंदर सी बात आपने कही और ऐसी बातें लिखकर आप हमें हमारा बचपन भी याद दिला रहे हैं। और ऐसी ही यादों को साझा करते हुए सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी भी हमारे साथ हैं, जिन्हें ये दौर बहुत अच्छा लगता है और उन्हें याद है कि बचपन में वो बूंदी के लड्डू खाया करते थे, झंडे फहराने जाते थे, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते थे और राष्ट्रगीत गाया करते थे। बहुत खूबसूरत बात। और एक और सुंदर सा संदेश साझा किया है, ये हैं हमारे उग्रसेन यादव जी, जिन्होंने कहा है कि इस दौरान जब स्वतंत्रता दिवस होता था तो बचपन में खुद अपने हाथ से पेंट करके तिरंगे बनाते थे और एक बांस की लंबी डंडी उसमें लगाकर स्कूल जाते और स्कूल से गांव-गांव उसे लेकर वो एक कतार में घूमते थे सारे बच्चे और गाना गाते हुए जाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बचपन तो ये जो एहसास है वो एहसास ही बहुत खूबसूरत सा एहसास है और ये खूबसूरत से एहसास से हम सभी जुड़े रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ऐसे ही खूबसूरत एहसास ही बनाते हैं हमारी खूबी को। तो दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, उसकी खूबी जरूर होती है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी अपनी खूबी क्या है, यानी कि आपकी USP क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, बिजनेस की दुनिया में USP शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी प्रोडक्ट को खास बनाती है, लेकिन जिंदगी में जब हम इसी USP की बात करते हैं तो ये आपके गुणों की बात करते हैं कि आपका ऐसा कौन सा गुण है जो आपको खास बनाता है। सोचिए जरा भाई, किसी की USP उसकी आवाज हो सकती है, किसी की उसकी अपनी मुस्कान, किसी की अपनी मेहनत, किसी का अपना ज्ञान, किसी के सोचने का ढंग अलग हो सकता है, किसी की अपनी ईमानदारी और साफ गोई हो सकती है उसकी USP, है ना। तो डिग्री और करियर की पहचान के साथ गुणों को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है अपनी विशेषता को बरकरार रखने के लिए। तो कौशल, नवाचार और व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी खूबियां हमें दी जा रही है ताकि हम सीख अपने गुणों को और पहचाने। तो दोस्तों, हम सब में कुछ ऐसा है जो हमें भीड़ से अलग बनाता है, तो आपको पहचानना है और निखारना है अपने आप को और ढूंढना है कि ऐसा क्या है खास आपका जो आपको अलग बनाता है और भगवान ने उस खूबी को आपको दिया है सबसे अलग रहने के लिए।

0: लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज में गाइड फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों, और इन खूबसूरत बातों और संकल्पों के साथ आज के कार्यक्रम का होता है यही विराम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अनुमति दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को। नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के

0: आकर्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions raised by the members in the Parliament. Speaking to reporters at the Parliament premises today, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion. The Union Home Minister said the opposition may submit the notice to the Speaker by 2 p.m. for holding a discussion on the issue so that the debate can start at 3 p.m. today.
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे।
4: प्लीज सबमिट दैट लेटर टू द स्पीकर बाय 3 p.m. टुडे। फ्रॉम 3 p.m. टुडे अंटिल 3 p.m. टुमारो वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स। आई विल रिमेन प्रेजेंट इन द हाउस, लिसन टू एवरीवन एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल।

1:10 हो चुके हैं एफएम गोल्ड पर। ये वक्त है कलाकार बेमिसाल का। आपके साथ मैं हूँ रजनी। आज बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उनके प्रशंसक उन्हें लेडी अमिताभ के नाम से भी पुकारा करते थे क्योंकि उनकी फिल्में उनके नाम से चला करती थी। और ये अभिनेत्री है नन अदर देन श्रीदेवी।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 केरला स्टेट अवार्ड।

अवार्ड और एक तमिलनाडु स्टेट अवार्ड श्रीदेवी के नाम है। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के मीनमपत्ती गांव में उनका जन्म हुआ। श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं, उनके पिता अयप्पन एक वकील थे और माँ राजेश्वरी एक गृहिणी थी। उनकी जिंदगी पर और रोशनी डालेंगे इस गाने के बाद जो हमने चुना है फिल्म लम्हे से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और इला अरुण की।

श्रीदेवी की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन वो तमिल भी बिल्कुल फर्राटे से बोलती थी। उनकी पहली जो फिल्म थी वो भी तमिल में ही थी। साल था 1966, फिल्म का नाम था कंदन करुणाई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 4 बरस की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी बाल भूमिकाएं निभाई। 1971 में आई मलयालम फिल्म पूम पट्टा में अपने अभिनय के लिए सिर्फ 8 बरस की उम्र में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का केरला स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। हिंदी दर्शक पहली बार जिस फिल्म से उनसे रूबरू हुए वो थी जूली। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनकी पहली हिंदी फिल्म थी रानी मेरा नाम, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी। फिलहाल अगला गाना हमने चुना है फिल्म नगीना से, और इस गीत से बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन में किसी का बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, तो इस गाने पे अक्सर हम लोग डांस किया करते थे। और आपके जिंदगी में भी शायद इस गीत से जुड़ी ऐसी ही कोई मीठी सी याद बचपन की जुड़ी होगी। तो आइए नगीना फिल्म से गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

इस ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल और आज हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की। 1976 में तमिल फिल्म मुंद्रु मुदिचु में उन्हें पहली मुख्य भूमिका मिली। कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाने के बाद उनकी मुख्य भूमिका वाली पहली हिंदी फिल्म थी 16वां सावन, जो कि 1979 में आई थी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। इसके 4 साल बाद आई उनकी दूसरी हिंदी फिल्म से श्रीदेवी को रातों रात स्टार बना दिया और ये फिल्म थी

हिम्मतवाला के बाद आई सदमा में श्रीदेवी के अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद उनकी फिल्में जस्टिस चौधरी, मवाली, इनकलाब, तोहफा, मकसद, नगीना, आखिरी रास्ता, जाबाज, कर्मा, सुहागन, औलाद, नजराना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई जैसी उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। जुदाई के बाद एक लंबे ब्रेक से श्रीदेवी ने वापसी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से। इसके बाद 2017 में आई मॉम में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली, लेकिन इसके अगले ही वर्ष 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी के असामयिक निधन की खबर आई तो ये दर्शकों के लिए बहुत शॉकिंग था। इसी साल उनकी फिल्म मॉम के लिए श्रीदेवी को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म सदमा से।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कॉमिक किरदारों को बेहतरीन ढंग से फिल्मों में उतारा है पर्दे पर। चाहे आपको चालबाज फिल्म याद होगी, आपको जिस तरीके से मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने चार्ली चैपलिन का वो छोटा सा रोल किया था वो आपको याद होगा। और श्रीदेवी ने अपने लगभग 50 बरस के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर श्रीदेवी को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनके योगदान को सराहा गया। ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान के अलावा कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष सम्मान, कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टाइटन रेजिनॉल्ट एफ लुइस आइकन अवार्ड और सिनेमा में उनके योगदान के लिए एशियन अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था।

चाशी दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 12 तारीख व दिन है बुधवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायिका सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, मनपा उद्घोषक श्री तुतन ताशी तथा अन्य

सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन लामू। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोता आपसे चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से

0: छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
1: इन तिरंगा यात्रा बाइक एंड साइकिल रैलीज कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द sentiment behind them is common. The national flag is a symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले प्रदर्शनियां मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली चित्रकला निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव

0: हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंदारोप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अंग प्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए सुरेश वाटकर की आवाज में चंद राधे गोविंद वंदना।

भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर के आवाज में कृष्ण भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना इन्हीं कलाकार के आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए पापोन के आवाज में चंद असमिया गीतों का।

श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पापोन की आवाज में चंदा समिया गीतों का। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया पापोन के आवास में चंद असमीय गीतों का। इसी के साथ विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम।

0: मेरी बात इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए पीएम श्री जेएनवी तवंग के 11वीं कक्षा के छात्रा विकी लामो से जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक समुदाय पर प्रभाव विषय पर उनके विचार।
1: ताशिदली आप सभी को मैं डेकी लामो पीएम श्री कक्षा 11वीं विज्ञान की आकाशवाणी तवंग से प्रसारित मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की बात नहीं रह गई है। यह परिवर्तन हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मियां पहले से अधिक बढ़ने लगी है, सर्दियों में बर्फबारी अनियमित हो गई है, बारिश कभी बहुत अधिक हो तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। यह सभी परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर जीवन रेखा होती है लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं, इससे स्रोत सूख रहे हैं, भविष्य में जल संकट बढ़ रहा है। पहाड़ों में अब ना तो बारिश समय पर होती है और ना ही बर्फबारी पेरी जैसी रही है। साथियों, अब मैं जलवायु परिवर्तन हमारे मोनपा जनजाति को कैसे प्रभावित कर रही है के विषय पर बोलना चाहूंगी। मोनपा समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते आए हैं। हमारी संस्कृति, कृषि, पशुपालन और जीवन शैली पूरी तरह से पहाड़, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है लेकिन आज बर्फबारी का समय बदल रहा है, जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, पशुपालन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद मोनपा जनजाति की पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति संसाधनों की रक्षा, सामुदायिक जीवन और सदा जीवन आज पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। यदि हम उनके अनुभव और प्रकृति सम्मत जीवन शैली से सीख लें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ के मौसम पर निर्भर रहती है मोनपा समुदायों की पारंपरिक खेती लेकिन अब फसल बोने का समय बदल गया है। पाला और असमय बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो युवा रोजगार की सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, इससे गांवों की जनसंख्या घटती है, पारंपरिक ज्ञान संस्कृति कमजोर होती है। समाधान सरकार या संस्थाओं तक सीमित नहीं है, हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और बचाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि तवंग के पहाड़ सुरक्षित है तो नीचे बहने वाली नदियां सुरक्षित है, यदि मोनपा संस्कृति सुरक्षित है तो प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सिर्फ बातें नहीं जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जेएनवी तवंग के 11वीं कक्षा के छात्रा दिकी लामो से जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक समुदाय पर प्रभाव विषय पर उनके विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को, जिसका पहला नगमा प्रस्तुत है आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहापत्रा के आवाजों में। गीत के बोल है कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, ओम शांति ओम फिल्म से के आवाज में। विशाल बदलानी द्वारा शब्दबद्ध इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया ओम शांति ओम फिल्म से एक गीत का। इसी के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित मकबू का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, चलिए अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को, जिसका पहला नगमा लीजिए हमने चुना है बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, शब्द दिया है कुमार ने और संगीत अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा नगमा प्रस्तुत है राबता फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के आवाजों में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध अमिताभ माफ कीजिएगा शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध प्रीतम ने।

श्रोताओं, आपने आनंद लिया कपूर एंड सन्स फिल्म से अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में एक खूबसूरत से गीत का, जिसे रचा है अभिरुचि चंद ने और संगीत से सवारा है अमाल मलिक ने। तो आइए कार्यक्रम गीत मंजरी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं तमाशा फिल्म से एक गीत मोहित चौहान के आवाज में, जिसे शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं बरेली की बर्फी फिल्म से एक गीत, जिसे गाया, रचा और संगीत में पिरोया है आरको ने।

संगीत से संवारा है प्रीतम ने। लीजिए अगला नगमा सुनिए रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर के आवाजों में। गीत के बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत कौशिक आकाश और गुड्डू का।

श्रोताओं कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा सुनिए, सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बख्शी के आवाजों में। इस गीत के बोल है रश्मि विराग के और संगीत तनिष्क बख्शी का।

श्रोताओं, सिम्बा फिल्म के इस नगमे के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम

आज आनंद लीजिए शेख चिन्नू मौलाना से नदस्वरम वादन का, राग है केदाराम। नदस्वरम पर उन्हें संगत दे रहे हैं शेख कासिम, तावील पर एस सुब्रमण्यम और आर राजेंद्रन तथा तालम पर टी नागराज।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे शेख चिन्ना मौलाना से नदस्वरम वादन का। इसी के साथ कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने के रील्स तथा सोशल मीडिया

0: विस्फोट संकट का संस्कृति से बचने का किया आग्रह। असम की सीमा के पास हिमे गांव में हाल ही में हुए घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू तथा गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन और तोलोक बांगो वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 में सफल 72 उम्मीदवारों को सम्मानित कर नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए। कहा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की रेशम उत्पादन तकनीक हस्तांतरण पहल मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 के तहत सिले स्थित रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर में एक परामर्श बैठक आयोजित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को कर रही है मजबूत। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला प्रशासन ने आज जॉइंट बुद्ध स्टेचू से तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा यात्रा का किया आयोजन और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड सेप्टन्स टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जोवखिर सिंधारोव को हराकर दर्ज की पहली जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
1: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। यह आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा।
1: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: असम सीमा के पास हिमे गांव में हाल ही में हुई घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू तथा गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन और दोलोक गांबो वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की प्राथमिकता संवाद को बढ़ावा देने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की है। इसके अंतर्गत शांति बनाए रखने और आपसी विश्वास कायम रखने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को बातचीत में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले राज्य के गृह एवं सीमा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने धेमाजी और लोअर सियांग के पास हाल ही में हुई सीमा झड़प के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। मीडिया से बातचीत में श्री नातुंग ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों में शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और लंबे समय से कायम भाईचारे की भावना बनाए रखने की अपील की। गत सोमवार को असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर मिंगमांग बस्ती में दोनों राज्यों के लोगों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है।

0: दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के मिले चंद में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 में सफल 72 उम्मीदवारों को सम्मानित कर नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा है कि 72 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हाल के वर्षों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत अन्य श्रेणियों में सैकड़ों कर्मियों की भर्ती से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में मानव संसाधन की कमी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ रिक्तियां अभी बाकी हैं, जल्द ही उन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ट्रिम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 35 पद, राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 61 पद और जीडीएमओ में 79 पद अभी रिक्त है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सरकार की सेवा को चुनने की सराहना की और कहा है कि बार बार विज्ञापन जारी किए बिना कम संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सा भर्ती के लिए सामने आते हैं। उन्होंने नवनियुक्त विशेषज्ञों से अपने पदस्थापन को लेकर रोजगार का अवसर न मानकर उन समुदायों की सेवा का अवसर समझने का आग्रह किया जो वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की रेशम उत्पादन तकनीक हस्तांतरण पहल मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के तहत सिले स्थित रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रेशम उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देने और ईस्ट सियांग जिले में रेशम उत्पादन को मजबूत करना था। बैठक में 50 से अधिक रेशम किसानों, संबंधित अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ईस्ट सियांग की उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने समर्पित किसानों को सरकारी सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ साथ जिले में रेशम उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात कही। और खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर में प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जोखिर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंद ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबाए बनाए रखा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Indu Chukwu. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is fully prepared to discuss an issue, including the students' issue.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए श्रोताओं, हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा

कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए लामा रिंचिन सेवंग, गेलोंग जंपा तेंदर और लामा नीमा सिरिंग से युनचक सुम्पा और लामा छोपा छोकर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम

7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए 83 फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें आज हम आनंद लेंगे कटी पतंग, पाकीजा, आपकी कसम, काली टोपी लाल रुमाल तथा बदलते रिश्ते फिल्मों से चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट्स कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे News@9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 13 अगस्त 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए कुमार सानू के आवास में चंद आधुनिक बांग्ला गीतों का कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर महिलाओं पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच कार्यक्रम गीत मंजरी कल दोपहर 3:50 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा, कपूर एंड सन्स फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर, तमाशा फिल्म से मोहित चौहान, सनम रे फिल्म से अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमाल मलिक, हॉलीडे फिल्म से अरिजीत सिंह, क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह, अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से आतिफ असलम, नोटबुक फिल्म से विशाल मिश्रा, जुग जुग जियो फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ तथा भूत फिल्म से अखिल सचदेव और मशील गुजराल के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मुन्पा कार्यक्रम नमधर लेरिम के तहत सुनिए शास्त्रीय उपन्यास छुईगे मिड्रक नमधर का मुन्पा में अनुवादित पहला भाग। दैनिक मुख्य सूचना मुन्पा में श्री थुतंताशी से कल शाम 5:30 पर, 5:35 पर साप्ताहिक मुन्पा कार्यक्रम दैनिक समा के तहत आनंद लीजिए दुर्जी पासम सांगमो, लुंगतन मुर्बू, सिरिंग नमगे, जम्बे थुपतन, ब्रोकपा और सिरिंग हटन तथा जम्बू से चंद आधुनिक मुन्पा गीतों का। लेरिम सेडा कल शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर जेदुन लेरिम के तहत सुनिए अनी केसम और साथियों से लामा छोपा। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमतन के 8वीं कक्षा के छात्र तंजिन शराब से सुनिए एक अंग्रेजी भाषा की कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक कल शाम 7:11 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे मशहूर गायक सुखविंदर सिंह और अन्य कलाकारों के आवाजों में दिल से फिल्म से ताल, तीस मार खान, रईस, सुल्तान, संजू और लगान फिल्मों से।

चंद नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए स्वदेश फिल्म से एआर रहमान के आवाज में एक देशभक्ति गीत का। कल रात्रि 8 आपकी वत्सल फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन कल रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के सभी कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

Jesus,

0: 네.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर ले

0: मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और अपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और अपोजिशन जवाब सुनने चाहते हैं और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयुष जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमूल, शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारेशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation, Muralidhar Mohol, moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Parliament has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Replying to a debate on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Varma was tabled in both the Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Varma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Varma after burnt cash was found.

आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं या उन वीरों के बलिदान की याद है जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। तिरंगा केवल हमारा झंडा नहीं या हमारे गौरव, एकता और बलिदान की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत को आज़ादी मिले आने वाले 15 अगस्त 2026 को पूरे 80 वर्ष हो रहे हैं। तो आप सभी को आकाशवाणी तवांग परिवार की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त दोजी टोलमा, तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, अश्युत बर्मन और शिखा देका के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं हमारे आज के

0: आकाशवाणी तवांग है, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बाबुल बोरो।
0: बाबुल बोरो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: से बोल रहा हूँ,
0: बालीपारा असम से।
1: हाँ, हाँ।
0: आकाशवाणी तवांग में स्वागत करती हूँ, और बताइए आपको मैं आज कौन से गीत पेश कर सकती हूँ इस कार्यक्रम में?
1: आपका ये तवांग का ये आकाशवाणी का प्रोग्राम मैं रोज सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी जी,
1: तो मुझे साजन फिल्म का गाना सुनाइए।
0: साजन फिल्म से कौन सी गीत
1: आपका पसंद से गाना सुनाइए, जो भी है मुझे सब गाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, साजन फिल्म के सारे गाने आपको पसंद है, तो कोई सा भी गीत आपके लिए पेश कर सकती हूँ। और आपके साथ कोई और है इस गीत को सुनने वाले?
1: कुछ लोग है।
0: हाँ जी।
1: खगन बोरू है।
0: हाँ जी।
1: ओसिम बोरा, ये मेरा दोस्त लोग है, वो
0: जी
1: लोग भी सुनना चाहता है।
0: जी, तो इसी के साथ क्या मैं आपकी फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: हाँ, पेश करिए। हाँ।
0: जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो जी, नमस्कार
1: हाँ, मैं बोमडिला से कह रहा हूँ। ये रेडियो तवांग है ना?
0: जी, आकाशवाणी तवांग है। आप बोमडिला से
1: अच्छा
0: कौन बोल
1: अच्छा
0: रहे हैं?
1: मेरे को एक गाना सुनाना है।
0: जी जी जरूर सुनवाएंगे।
1: राम तेरी गंगा मेरी।
0: हाँ जी हाँ जी, आपके नाम क्या मैं जान सकती हूँ?
1: संजीव सिन्हा।
0: संजीव चिन्ना
1: हाँ
0: जी, आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके साथ आपके कोई दोस्त होंगे इस गीत को आपके साथ सुनने वाले?
1: अनवर सिंह है,
0: जी जी
1: वो भी मेरा दोस्त है, वो भी सुनना है। गाना सुना दीजिए।
0: और हमारे आकाशवाणी तवांग आप बोमडिला में किस माध्यम से सुनते हो? मोबाइल एप्लीकेशन से सुनते होंगे ना?
1: हाँ।
0: संजीव जी, तो मैं आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ, और आज बोमडिला से पहली बार शायद हमें कॉल मिली है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ।

0: हेलो,
1: तवांग में फोन लगा क्या?
0: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी तवांग है।
1: अच्छा, ये एक गाना फरमाइश था आज का।
0: आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जसविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, जम्मू से। जी जी, आपका बहुत स्वागत है जसविंदर जी। और बताइए, मैं कौन सी गीत आपके लिए पेश कर सकती हूँ?
1: सैयारा गाना सुनने के लिए मिस होता है।
0: सैयारा?
1: सैयारा,
0: हाँ हाँ, सैयारा फिल्म से कौन सी गीत आपके लिए मैं पेश करूँ?
1: सैयारा गाना है।
0: सैयारा ही ना? जी जी, जरूर सुनवाएंगे। और आपके साथ कोई और है इस गीत को सुनने वाले?
1: नहीं, मेरे साथ तो ही कोई नहीं है, मैं अकेला ही।
0: जी जी, आप वैसे क्या करते हैं?
1: मैं इधर ही हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी आवाज जो है हम तक थोड़े से कम पहुंच रहे हैं, तो आज के लिए मैं आपकी फरमाइश पेश कर रही हूं। और हमारे साथ इतने दूर से बड़े ही प्यार से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।
1: ओके मैम।

0: जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें जरूर फोन कीजिएगा। और हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ ही अब आपकी रेडियो दोस्त दोजी डोलमा को तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, अश्युत बर्मन और शिखा दिका के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया हमारे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का, जिसका निर्माण एवं संचालन किया है आकाशवाणी तावंग की हिंदी उद्घोषिका दुर्जी ड्रमा ने। इसी के साथ अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। असम सीमा के पास हिमी गांव में हाल ही में हुई घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू तथा गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन और दोरोक बोंगो वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की प्राथमिकता संवाद को बढ़ावा देने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की है। इसके अंतर्गत शांति बनाए रखने और आपसी विश्वास कायम रखने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को बातचीत में शामिल किया जा रहा है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री एवं सीमा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने धेमाजी और लोअर सियांग के पास हाल में हुई सीमा झड़प के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। गत सोमवार को असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर मिंगमांग बस्ती में दोनों राज्यों के लोगों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 में सफल 72 उम्मीदवारों को सम्मानित कर नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ट्रिम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 35 पद, राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 61 पद और JDMO के 79 पद अभी रिक्त है। उन्होंने नवनियुक्त विशेषज्ञों से अपने पदस्थापन को लेकर केवल रोजगार का अवसर न मानते हुए समुदाय की सेवा का अवसर समझने का आग्रह किया, जो वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पशुपालन राज्य मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने निर्जल स्थित सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म में आधुनिक कैटल शेड के निर्माण की आधारशिला रखी। ये परियोजना राज्य में पशु धन संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशु प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री वांगसू ने परियोजना के लेआउट का निरीक्षण कर फार्म में पशु प्रजनन तथा डेयरी गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों के साथ रणनीतियों की समीक्षा भी की। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तवांग जिला प्रशासन ने आज जैन बुद्ध स्टेच्यू से तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में प्रतिभागियों ने हाथों में राष्ट्रध्वज के साथ 100 मीटर लंबे राष्ट्र तिरंगे को भी लेकर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को तवांग के प्रभारी उपायुक्त रंजन देता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय

0: स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर आज पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ईस्ट सियांग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सहयोग से किया। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि युवाओं को कानूनी रूप से जागरूक रहना, अपने अधिकार का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करना तथा अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज के व्यापक हित में करना चाहिए। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह ने आज सियांग नदी पर निर्माणाधीन कुमुक पुल का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ये पुल बुलिंग को बाबू क्षेत्र से जोड़ता है। निरीक्षण के दौरान श्री दासिंह ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, संरचनात्मक मजबूती और समयबद्ध निष्पादन के लिए जोर देते हुए यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि परियोजना का प्रत्येक पहलू उच्चतम मानकों के अनुरूप किया जाए। कृपानूर जिले की जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक आज यचुल स्थित मिनी सेक्रेटेरिएट में आयोजित की गई। बैठक में टास्क फोर्स द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया SOP पर चर्चा की गई, सहित जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 और राष्ट्रीय राजमार्ग 713 पर अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग को नियंत्रित करने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर तत्काल लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। अपर सुबनसिरी उपायुक्त तसो गंबो, पुलिस अधीक्षक पवन कुमार यादव तथा तागिन कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष लारजी रेगिया ने आज सुबनसिरी नदी पर लीदा गांव और सिकारीजो को जोड़ने वाले निर्माणाधीन ट्रस्ट पुल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री रेगिया ने जनता से यात्रियों से अगले 2.5 महीने तक शांत और धैर्य बनाए रखते हुए बिना किसी सार्वजनिक व्यवधान के निर्माण कार्य को शांतिपूर्वक होने देने की अपील की। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों ईस्ट कमिंग, बापुमपारे, दिवांग वैली, अंजाव, नमसाय और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. Chief Minister Pema Khandu today held discussions on the situation arising from the recent incident at Hime village in Arunachal Pradesh near the Assam border with APSU and representatives of the Galo Welfare Society, Galo Students Union and Dolok Bango Welfare Society. The Chief Minister said the priority is to facilitate dialogue and restore normalcy at the earliest. All concerned stakeholders are being engaged to maintain peace and uphold mutual trust, Mr. Khandu informed. Meanwhile, Home and Border Affairs Minister Mama Natung had called for peace between the both states. On Monday, multiple people were injured after a clash took place between people from Assam and Arunachal Pradesh at the Mingmang Basti along the Assam-Arunachal Pradesh border. Chief Minister Pema Khandu today felicitated and presented orders of appointment to 72 successful candidates for the Medical Specialist Recruitment Examination 2026. He described their induction as a major step towards strengthening specialist healthcare services across Arunachal Pradesh. Chief Minister Pema Khandu informed that 35 specialist doctor vacancies at TRIMS, 61 in government hospitals and 79 GDMOs are still to be filled. He urged the newly appointed specialists to view their postings as opportunities to serve communities awaiting specialist medical care for years. Animal Husbandry Minister Gabriel D. Wangsu laid the foundation stone for a modern cattle shed at the Central Cattle Breeding Farm CLF Nirjuli on Tuesday. The project is a key initiative to upgrade livestock infrastructure and adopt modern scientific cattle management practices across the state. Minister Wangsu also inspected the project layout and reviewed strategies with officers to further boost cattle breeding and dairy activities at the farm. Joining the nationwide Har Ghar Tiranga campaign, District Administration Tawang today organized a Tiranga Yatra from the giant Buddha statue to the Tawang War Memorial. Joining the nationwide Har Ghar Tiranga campaign, District Administration Tawang today organized a Tiranga Yatra from the giant Buddha to the Tawang War Memorial. The participants carried a 100-meter-long national tricolor along with a national flag in their hands.

0: निजी श्रोताओं अब पेशे कार्यक्रम कौमे तराने। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए 83 फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत का, जिसे रचा है कौशल मुनीर ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।
1: पीएम जय।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया 83 फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत को आरम्भ करते हैं। पादमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा के फरमाइशी नगमे के साथ, जो कि है कटी पतंग फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत के बोल है आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा सुनिए, पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की फरमाइश हमने पाई है पजोनिया जलंग उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चांसोलिया से। गीत के बोल है गुलाम मोहम्मद के और संगीत के माफ कीजिएगा गीत के बोल है कैफी आजमी के और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

साथियों अगले गीत की फरमाइशें किए हैं मेरठ से दिग्दर्शन गौर, कविता गौर, संजय डुंगिया, संदीप मक्कर, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई ने। साथ ही निमानाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर ने। और यह गीत है आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द है आनंद बख्शी के और संगीत आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमों का। हमारे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से, तो आइए इस सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला नगमा, काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से, जिसकी फरमाइशें हमने प्राप्त किए हैं नालेश्वर नगर नारवेल के पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर तथा मलकापुर से नारायण इंगले, सोपन तैयारे और आशीष मोहेकर से। यह गीत है मोहित।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनते हैं। मजनू का टिल्ला दिल्ली के कमल भालूजा, मधु भालूजा और सागर भालूजा तथा सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के फरमाइश पर। ये गीत है बदलते रिश्ते फिल्म से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, शब्द अनजान ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। आर प्रज्ञानंद ने सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता में जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। एचसीएल स्कॉश पीएसए चैलेंजर टूर में सूरज कुमार चंद ने हसन मिन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला की घोषणा, अफगानिस्तान श्रृंखला की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप से, जहां तीसरे दिन भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शानदार शुरुआत करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। कनाग लक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जॉयस अशिता ने रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। सीनियर पुरुष एपी इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का 2वां स्वर्ण पदक जीता। शेरजिन ने दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जबकि वेल्स के बर्खार्ट मार्क और साउथ अफ्रीका के लोसवस्की सरगई ने ब्रॉन्ज मेडल साझा किए। सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में सिंह करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम युंगी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का 3रा गोल्ड मेडल जीता, जबकि शिम युंगी को रजत पदक मिला। टीम के साथ ही कुमारेशन पद्मा गेशो निधि ने नाइजीरिया के अकिनियो सोए ओलुवा फोलायेमी के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया। भारतीय टीम अब फॉइल, एपी और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शुरुआती 3 दिनों में जीते गए 29 पदकों के उत्साह को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया लागोस में अपना दबदबा बनाए रखने और शानदार तरीके से अभियान का समापन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रतियोगिता में सीनियर महिला फॉइल, सीनियर पुरुष एपी और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में दबदबा बनाते हुए टीम इंडिया के तीसरे दिन के शानदार प्रदर्शन से देश के कुल पदकों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।

0: और अब बात करते हैं शह और मात के खेल शतरंज पर। सिंकफील्ड कप के तीसरे राउंड में आज रात 10:30 बजे से भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का सामना विंसेंट कीमर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारोव पर बड़ी जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: प्रज्ञानंदा ने 6 घंटे तक चले मैराथन गेम में 95 चालों में शानदार जीत हासिल की। 82वें चाल में सिंदारोव की गलती का फायदा उठाकर प्रज्ञानंदा ने बढ़त हासिल करते हुए जीत पक्की कर ली। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिकन सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ से की थी और आधे पॉइंट के साथ दूसरे राउंड में एंट्री की थी। सिंदारोव पर जीत ने प्रज्ञानंदा को खिताब की दौड़ में बनाए रखा है। टूर्नामेंट में 3 और अहम नतीजे आए। एरोनियन ने विंसेंट कीमर को, MVL ने सेवियन को और वेस्ली सो ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराया। 2 राउंड के बाद 5 खिलाड़ी 1.5 अंक के साथ लीड साझा कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अपना पहला रैपिड और ग्रैंड चेस टूर के पहले US लेग के तौर पर 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में ब्लिट्ज खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 18 में से 12 पॉइंट्स के साथ रैपिड सेक्शन में टॉप करके अपनी जीत पक्की की और ब्लिट्ज में ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के बाद वे अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड रैपिड रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। सिंकफील्ड कप 2026 ग्रैंड चेस टूर का आखिरी नियमित सीजन स्टॉप और सिग्नेचर क्लासिकल इवेंट है जो कि 19 अगस्त तक खेला जाएगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: पिछले ही सप्ताह आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीता था और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रतियोगिता की भी बात की जाए सिंकफील्ड कप में भी, तो उन्होंने दूसरे राउंड में चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारोव पर बड़ी जीत हासिल की है। पहला मुकाबला उन्होंने ड्रॉ खेला था। और उधर महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन 16 से 26 अगस्त के बीच एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा। इसमें 10 देशों के 157 खिलाड़ी भाग लेंगे। MCA के अध्यक्ष परिणय फुके, टूर्नामेंट डायरेक्टर निरंजन गोडबोले और आयोजन सचिव सलील घाटे ने आज इस बात की घोषणा की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में 6 इंटरनेशनल मास्टर्स, 24 फिडे मास्टर्स और महिला फिडे मास्टर्स शामिल हैं। एशिया के टॉप अंडर 20 टैलेंट वाले इस टूर्नामेंट में क्लासिकल स्विस फॉर्मेट के 9 राउंड के अलावा रैपिड और ब्लिट्स के 7 राउंड भी होंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, एशिया चेस फेडरेशन और फिडे की देखरेख में होने वाला यह टूर्नामेंट मुंबई के ITC मराठा में खेला जाएगा। यह देश के जूनियर्स के बीच सबसे पसंदीदा इवेंट्स में से एक है, जिसने विश्वनाथन आनंद, अभिजीत कुंटे, तेजस बाकरे और तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, इवाना फुर्टाडो जैसे मशहूर खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया है। क्लासिकल स्विस फॉर्मेट में 157 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि 153 खिलाड़ी रैपिड इवेंट और 151 खिलाड़ी ब्लिट्स इवेंट में खेलेंगे। ओपन सेक्शन के खिलाड़ियों का औसत ELO रेटिंग 2054 है, जबकि जूनियर महिला सेक्शन का औसत ELO रेटिंग 1885 है। ओपन लिस्ट में भारतीय IM मयंक चक्रवर्ती सबसे आगे हैं। उनके बाद रूस के IM आर्टेम पिंगिन और भारतीय IM अपूर्व कामले हैं। जूनियर महिला सूची में भारतीय WFM प्रतीति बोर्दोलोई सबसे आगे हैं। इस प्रतियोगिता में विग्नेश, अद्वैत वेमुला, आदित्य ढींगरा, अक्षय बोर गावनकर, स्वरा लक्ष्मी नायर, मृतिका मल्लिक और सारणा देवी नरहरी जैसे प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ी भी स्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फुटबॉल पर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कल डूरंट कप के अपने आखिरी ग्रुप F मैच में FC1 को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पार्थिव गोगोई ने दोनों हाफ में गोल दागे, जबकि अलाइदीन अजराई ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए तीसरा गोल किया। FC1 की ओर से इकलौता गोल मोहम्मद इलियास ने किया। हाईलैंडर्स ने अपने ग्रुप स्टेज अभियान का समापन 3 मैचों में 3 जीत के साथ किया और ग्रुप F के विजेता बने। वहीं FC1 ने अपने पहले डूरंट कप अभियान का समापन 3 मैचों में 3 अंकों के साथ किया।

0: किया। और अब बात करते हैं स्कॉश पर। HCL स्कॉश PSA चैलेंजर टूर में कल पुरुष प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने हसन मिन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्र के हसन मिन शावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सूरज कुमार चंद ने ये मुकाबला 73 मिनट में अपने नाम किया। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठे सीड अयान वजीराली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से मात देकर पुरुष क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए हैं और अब ये कोलकाता चरण में है। इस इवेंट में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इनामी राशि $9,000 रखी गई है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोता, आपको बता दें कि पुरुष वर्ग में आठवीं वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल, संदेश पलनीवेल रवि कुमार, मोहम्मद गोहर, सूरज कुमार चंद, अहमद सईद सोभी, हाजिम हुसाफ, सैफ रेफाई और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सोहैला हाजिम, अनन्या नारायणन, तन्वी खन्ना, निरुपमा दुमे, करीना श्रामकोवा, मेन्ना वालिद, उन्नति त्रिपाठी और रथिका सीलन ने जीत दर्ज की है। बिहार सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मजबूत खेल अवसंरचना तैयार हो सके। इसमें लगभग 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक खेल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कल इस परियोजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। और अब बात क्रिकेट पर। BCCI ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान भारत में T20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और उधर दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे आउटर दिल्ली वॉरियर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और पुरानी दिल्ली सिक्स आमने सामने होंगे। और अभ्यास मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए तैयार है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को होगा। 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में किन 5 खिलाड़ियों पर प्रदर्शन पर नजरें होंगी, आइए सुनते हैं उनके बारे में।
2: देवदत्त पटिकल के पास साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में खुद को साबित करने का बढ़िया मौका होगा। वार्म अप मैच में उन्होंने 142 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में नंबर 3 पर खेलने की तैयारी कर रहे पटिकल के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहेगी। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए इस श्रृंखला में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना होगा। पंत की हालिया फॉर्म को देखते हुए उनके चयन पर कई सवाल खड़े हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ अगर पंत का बल्ला खामोश रहता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं चाइना मैन कुलदीप यादव टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। टीम में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की मौजूदगी के चलते कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। वहीं मानव और सारांश जैन ने उनके लिए मुकाबला और कड़ा कर दिया है। अगर तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है। अभ्यास

0: में उन्होंने 15 गेंदों में 32 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया है। वैसे सिराज की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में जगह बनाई है। उन्हें बुमराह की जगह मौका मिला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के सीजन में 10 मुकाबलों में 60 विकेट लिए थे। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। सुजल सिंह 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और अभी अभी दीपक पुनिया उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आ गए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक

0: पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना

0: पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढककर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और

0: Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on any NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। महिलाओं पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच कल दोपहर 3:30 पर। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मुंपा कार्यक्रम दिंग दुख समा। साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक कल शाम 7:11 पर तथा रात्रि 8 बजे आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिडडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री कामयम्फो और श्री सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी